करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни.
1: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: हेलो फ्रेंड्स, टोकरी रेडियो सुनदा माता माता स्वागत है। ते गल्ला बातें ते इस रोज की करने हैं। आज मैं सोचा तुसे आज मैं जरा जम्मू शहर च घुमाई के आननी हां। अज एक सराटी होई है जा जम्मू शहर दे कुछ इलाके दी। के आखदे तुंदा के आखना है? मी ते लगदा है गल्ला बातें ते इस रोज की करने हैं की ना अज रेडियो सुनदे सुनदे अस एक कोई जगह के घूमे आ चे। ते मैं सोचा अज मैं तुसे ले चलनी हां बहुत ही खूबसूरत एक बाग च जो कि जम्मू शहर का बड़ा ही प्रसिद्ध बाग है। इतने नज़ारे जड़े ने बड़े ही मनोरम नज़ारे ने। तो सुनो पहले आज के एपिसोड का पहला गीत, फिर मैं तुसे ले चलनी हाँ बागे बहू।

हेलो फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनना मत मत स्वागत है। मैं हूं तुंदी आरजे नेहा शर्मा, डोगरन सोल। ते मेरा जिला डुगर प्रदेश है वो वीर ते वीरांगनाएं कन्ने प्रोचे रहा है। इंया के एक डुगर

जरूर शेयर कर देने। ते जिन्ने भी इतिहासकारों ने इन्हों नहीं पता लगी गई होना है कि ये कौन है। जिया कि मैं तो सही आख्या कि वह पहले शूरवीर है जिन्हें दुश्मन ने सलाम किया, उनकी समाधि दुश्मन के इलाके च बनी ठीक युद्ध के बाद। जिहड़ा गौरव है अपने आप च, यह सिर्फ इतिहास च एक के बंदे गीत होएदा है। ते ए बंदा कौन है सोचो सोचो, तुस पहले सुनो ए मिठा हरा गीत, ओदे बाद मैं दसनी आ, मैं कुंदे गल करानी आ।

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत की थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: मैं आ जा तो मैं हाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा। मैं आ जा तो मैं हाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 6474481000.
3: तुसी अपने फोन प्लान पे बहुत पैसे दे रहे हो। सेलुलर पॉइंट ते असी तुहाडे लई लेके आया बहुत ही वड्डी सेविंग्स, बेस्ट फोन प्लान्स ते बिना किसे शर्त तो। चाहे तुसी बिजनेस या फैमिली प्लान्स च सेविंग चाहुंदे हो, नो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन या लेटेस्ट फोन चाहिदा सब तो बेस्ट कवरेज नाल। सेलुलर पॉइंट ते तुहानू सब कुछ मिलेगा। विजिट करो सेलुलर पॉइंट, सेव टुडे, इट्स दैट इजी। अपनी नियरेस्ट लोकेशन cellularpoint.ca ते वेखो। सेलुलर पॉइंट, मोर फोन्स, मोर प्लान्स, मोर चॉइस।
4: ए टू जी किचन कैबिनेट, बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन। लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
5: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता, वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
6: टॉप फाइनेंशियल इंक तो, जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
7: क्रिटिकल मॉर्गेज, आरईएसपी, आरआरएसपी, विजिटर इंश्योरेंस, सुपर वीजा, स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स। जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने तां तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
6: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100 6473003100
7: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
8: यू आर लिसनिंग टू पंजाबी वर्सा मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 647-448-1000।
9: टोरंटो'स नंबर 1 स्टेशन AM 530
10: पंजाबी।

0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. मैं आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Toronto's number one station, AM 530.
4: Punjabi Vrata!

वेलकम टू डेव टाटला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होवेगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 बजे बुत नूं दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। हुण तों लै के 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999 799-0999।

0: लो जी मौसम दा हाल भी दस दिन्ने आ। जिहड़ी छतरी छता रिपोर्ट आ ओह कहिंदी आ 6:43 ते सूरज आया 7:50 ते चले जाणा, मामा चांस 10:50 ते शाम नूं आएगा ते कल नूं दुपहरे 2:36 ते जाएगा। अज दा तापमान 27-28 डिग्री तक जाएगा, लेकिन इस गोना फील हॉट। कल नूं तापमान 28 डिग्री सूरज चमकेगा, सैटरडे सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 27 डिग्री, संडे सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 26 डिग्री, मंडे सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 25 डिग्री, ट्यूजडे नूं सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 26 डिग्री। कल मीह पिया जी, जिस तरह तुहानूं दस्सिया वी झक्खड़ झोले आउणगे, नेरी आएगी, तूफान आएगा, मीह आएगा, गड़े आए, सब कुछ आए। कई इलाकें च मीह बहुत आया, कई इलाकें च हवा भी बड़ी चली, कई इलाकें च गोल्फ साइड दे की कहने होंगे बर्फ के टुकड़े जे डिगदे होंगे यार, दसो, आई हैव अ ब्रेन फॉग राइट नाउ। गड़े भी पए, गड्डिया के चब भी पए, कई जगह दरख्त डिग गए, कई जगह बिजली दियां तारां टुटियां, कई घर च बिजली चली गई। इत्थे दा एक अखबार है, कनेडा के ओंटेरियो सूबे च बिजली गुल, पता नहीं किन्ने घंटे लगन गए ठीक होने नूं। यार जे तू पंजाब इत्थे रह गए, पंजाब तो खबर लाउना इस तरह दियां, ते पंजाब जा कई देनी नहीं आउंदी हैगी, खंभा डिग पैंदा, खंभा वाले नूं रिश्वत देनी पैंदी है खड़ा करन लई, उह वी दस दिया करो ना नाल। इत्थे बैठे लोकां दे चूना जिहा लाई जांदे, पता नहीं की कुछ करी जांदे। खैर इन्हां नूं करन दो, इह आपदा कम, आपां इन्हां दी भंडी करन हटना नहीं, क्यों इन्हां ने आप नहीं हटना ते आपां क्यों हटीए। फिर यूनाइटेड स्टेट दे विच बीयर द जिहड़ी आ 1602 केस बीयर दे गुम हो गए, ब्लू रिबन ओल्ड मिलवाकी बीयर, ते बीयर बनाउण वाले ने $20,000 इनाम दिता वी, जिहड़ा लभ गए दसू वी किथे गई बीयर, 20,000 देवांगे। मैं सोचा 1602 केस ने 20,000, फिर पता लगा बीयर जिहड़ी आ 70,000 दी गुल होई आ, चोरी करके लै गया कोई, सीरियसली। लो जी जाने आने,
1: मिशन वैनिटीज ते न्यू शिपमेंट आ गई है, बाथरूम वैनिटीज दे सिलेक्टेड मॉडल्स ते भी अप टू 60% ऑफ, कॉन्ट्रैक्टर्स ले स्पेशल प्राइसेस, एना ही नहीं वैनिटीज दी परचेज ते सिलेक्टेड रेंज ऑफ मिरर्स फ्री। मिशन वैनिटीज डिक्सी एंड डेरी दे बिल्कुल नजदीक, कॉल 9056711800, 905-671-1800।
2: कंडीशंस अप्लाई।
3: आ भेणे खरीद लिया गहने,
4: किथे छान लिया शहर दा कोना कोना, किथे नहीं मिलिया चंगा सोना,
3: लै ए वी गल कोई कहण दी है, सोना तां सोना ही हुंदा, गल तां ज्वेलरी दे डिजाइन दी है।
4: गल तां तेरी सही है भेण, किथों मिलणगे गहणियां दे सोने डिजाइन।
1: जनक ज्वेलर्स, जनक ज्वेलर्स दे स्टोन ज्वेलरी दी नवी शिपमेंट पहुंच चुकी है, जिदे विच तुहानू एंटीक जड़ाऊ ते कुंदन सेट्स, रिंग्स, बैंगल्स ते लेटेस्ट डिजाइन दे डिजाइनर इयररिंग्स भी मिलणगे। जनक ज्वेलर्स, कॉल 9052308800।
0: ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਡਾਊਨ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚ। ਖੈਰ ਕਾਂਗੋ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਬੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੂਪ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਹ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ
5: वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
6: Are you ready?
0: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ 647-429-4040 ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 647-429-4040। ਲਾਈਵ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 647-429-4040। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਜਾਂ ਲੌਂਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 647-429-4040, 647-429-4040।
7: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call 905-791-4900.
0: अपनी कम्युनिटी लई खुशखबरी हीलैक्स वैलनेस फिजियो एंड रीहैब सेंटर खुल चुका है जिथों तुसीं फिजियोथेरेपी मसाज थेरेपी कायरोप्रैक्टर वर्गियां सेवावां प्रोफेशनल्स वल्लों दित्तियां जांदियां हन ते तकरीबन सारियां इंश्योरेंस कंपनियां नाल खुद डील करदे ने काउंसलिंग सर्विस भी अवेलेबल हन हीलैक्स वैलनेस फिजियो रीहैब 10930 गोरवे ड्राइव यूनिट 3X1 गोरवे एंड कंट्री साइड दे कॉर्नर ते ज्यादा जानकारी लई प्लीज कॉल 905-913-5256 905-913-5256
2: From the Dave Tatlin News Desk, locally covered, nationally connected.
0: Two more conservative members, who have caucus left, have been left, have been 9 ho chuki hai. America da F-16 jada jet hai, वीकेंड ते एयर शो होना है अपने CNE ते ओ हुण इत्थे नहीं परफॉर्म करेगा स्पोर्ट्स दे विच कल ब्लू जैट ने 11-0 नाल क्लीवलैंड गार्डियन नूं हराया वलाडी उन्हें छक्का मारिया ते 5 रन ले जिहड़ा जाली जां मीडिया सी ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਗੋਲ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी तक गाले को जोरे तो माँ भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 4162131165।
1: और रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets ni pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services de pal de vich puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper

0: अल्लाह ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
1: 47 429 4040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
2: आज कुछ तो बात हो गया
3: था। ओता होना ही है जो तक नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नकदा बनदा ही है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा
4: चल क्या रहे यहां पर
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा
6: एक लाइफ है जिसे लव है
7: ये कहते मुझसे सब है
8: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश परदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नू क्लिक करो, ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: देयर आर सिंगर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, एंड देन देयर आर लेजेंड्स। Defined generations, the one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
5: Malli Tent Services tuhade special events se har ek size de waterproof tents provide karde ne. 10 by 10 feet to leke 40 by 100 feet de tambu ne. Tables te kursiyan vi naal leke aunde ne te tuhade backyard nu banquet hall vaangu banaunde ne. Fancy chairs vi available han. LED glow in the dark bani banaiyan bars, tables te kursiyan vi tusi rent kar sakde ho. Ajj hi Malli Tent Services nu call karo
3: 6479992569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2569 6479 999 2 ਟੀਚਰ ਨਰਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਹੋਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 289952

0: singers, there are performers, and then there are legends. A voice that has defined generations, the one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Life and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
1: Hello, I am 5:32. Tusi sun rahe ho Desh Pardesh Prime Time Radio.
2: Today, vich live galbat karan layi hune call karo 905-564-6444.
1: Sunde
2: raho Desh Pardesh Prime Time Radio. Chalo AM 5:32.
3: Canada vich rehnde hoye har parivar ko लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
4: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381।
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
2: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हुए हो एक बार फिर सारे जी आनंद का स्वागत। तो सानू पूरी आशा हैगी कि तुसी अपना लॉन्ग वीकेंड बड़े ही अच्छे ढंग नाल अपने परिवारों के नाल अपने बच्चों के नाल क्योंकि बच्चों ने भी नाल दी नाल दूजे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों ने भी जाना यूनिवर्सिटी पहले साल जाना होंगे बहुत सारे बच्चों ने तो कल तो फिर फॉर बैक टू स्कूल भी जाना इंजॉय करो जो रहा थोड़ा लॉन्ग वीकेंड आ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਤ ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਵੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम कर दिया कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज कर दे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਟਿਊਨ ਚਲਾ।